0: अनुष्क रसंजित सिल्वा निर्माणयाक पार्टी के तरह
1: ओ इनागे यालो दम इनत
2: इनाई
1: हां यालो क्यूवट मन हितने गैलो मे किरा हरि वा कथा कर लेनो मा तुलेन इन परकला दिने
0: सत्यंतये रात्रि 9:00 ITN बलन्न पार्टी के तरह।

0: फी मनु तुनाई दशमा पहा अनु तुनाई दशमा हाता लखांडे रेडियो आईटीएन सेबे श्रीलंकिया हांडे
1: पसर देखा है विनाडी खाए
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: लोतराई ये पेरली करने एनएलबी मेगा पावर तेवंत मेगा सुपर टैग के अमतरव रुपियाल कोटि एक पावर सुपर टैग सह ग्रैंड सुपर टैग के सुपर रिमोट रत्या एनएलबी मेगा पावर ओबत अदम मिलदी कान।